तराई को छो रहे हूँ मैं, नेपाल को छो रहे हूँ मैं, पहाड़ को पनि छो रहे हूँ, तराई में देश जे भने पनि म नेपाली हूँ भन्ने बोल को राष्ट्रीय गीत संगे हमी कार्यक्रम अगि बढ़ाऊ श्रोता रो कार्यक्रम को हमी कार्यक्रम को दोसों घंटा में छो दिवत श्री कार्यक्रम के दोसों घंटा हो प्रस्तुत गीत महासत्ता वज्राचार्य गाने गीत हो। अब यह गीत संगसंगे आने हमें कार्यक्रम